0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढ़ामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जांच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्बन्धित रोग का बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
4: सुगर थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महीना को दोस्रो शुक्रवार बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
1: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जांच तथा उपचार सेवा।
5: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
6: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5684 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए
1: मध्य पश्चिम ट्रांग चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। तुलसीपुरमा टिप्पर से स्कूटी हना ठक्कर दिएबेर एक युवती को मृत्यु हो रहल। टिप्पर का ठक्कर से स्कूटी चालक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 का 21 वर्षीय कल्पना केसी को मृत्यु हो रहल। तुलसीपुर को गुमराह चौक में क प्र 003 P 2449 नंबर का मोटरसाइकिल से विपरीत दिशा से जयती करलक रा 5 P 7945 नंबर का स्कूटी हन आज दिनकुन गुमराह चौक लघु ठक्कर दिलक हो। मोटरसाइकिल का ठक्कर से स्कूटी समान दिशा हो जयती करलक रा 1 J 32 नंबर का टिप्पर से ठोकबेर दुर्घटना हुईलक हो। दुर्घटना में गंभीर घायती हुईलक केसी का राप्ती प्रादेशिक अस्पताल में उपचार के क्रम में निधन हुईलक। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर का प्रमुख डीएसपी होम बहादुर पराजुले से जानकारी दे रखल। घटना बारे प्रहरी से थप अनुसंधान करती रलक जना राखल। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र का 24वां स्थापना दिवस आज सम्पन्न हो रहल। केन्द्र का अध्यक्ष कैलाश रोका को अध्यक्षता तथा जिला प्रहरी कार्यालय दाङ का प्रमुख दीपक श्रेष्ठ का बरपौना में कार्यक्रम सम्पन्न हुईलक हो। ओ अवसर में कार्यक्रम का बरपौना श्रेष्ठ से समुदाय ओ प्रहरी बीच का सहकार्य जो शांति सुरक्षा ओ अपराध नियंत्रण का आधार हुईलक बटवा रखल। वहां से लागू औषत दुर्व्यसन घरेलू हिंसा साइबर अपराध तथा सामाजिक विकृति विरूद्ध समुदाय से हातेमालो कैकन अगाड़ी बढ़ पर्ना आवश्यकता औलेटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र से विगत 24 वर्ष से खेलक भूमिका प्रशंसनीय रलक बटवाइल रह। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ का केन्द्रीय सचिव सबिन प्रियासन दांग शाखा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी दांग जिला उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष बसंत जोशी नागरिक समाज दांग का सचिव नारायण श्रेष्ठ केन्द्रीय क पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदी संस्थापक सचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत से बोलल रह। स्थापना दिवस के अवसर में केन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान पुगिलक आजीवन सदस्यों को नकला खादा तथा सम्मान पत्र प्रदान कैकन सम्मान करगिल रह। सम्मानित व्यक्ति का नक योगदान से सामुदायिक प्रहरी अभियान हन थप प्रभावकारी बनाई महत्वपूर्ण भूमिका खेलक कति आयोजक से कृतज्ञता व्यक्त करगिल रह। राप्ती गाउँपालिका 5 कालापानी स्थित राप्ती आधारभूत अस्पतालमा काल विभिन्न रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन हुन रहल। राप्ती गाउँपालिकाका आयोजना लायन्स क्लब अफ राप्ती क्यापिटलका समन्वय तथा ओसीस्टार स्वास्थ्य परामर्श बुटोलको प्राविधिक सहयोगमा संचालन हुन शिविरमा हाड जोड्नी तथा नशारोग जनरल सर्जरी युरोलोजी रेडियोलोजी तथा एनेस्थेसिया सेवा सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गर्जिना अस्पताल जना राखल। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले विशेषज्ञ सेवा गाउँमा जो उपलब्ध गराकन नागरिकको उपचारमा सहज पुगाइकला सुनिश्चित गर्न उद्देश्य से शिविर आयोजना करगिलक बटवा रखल। वहां से विशेष कैकन हाथ जोड़नी तथा नशा सम्बन्धी समस्या मृगौला तथा पिशाब सम्बन्धी समस्या हुईलक बेरम्या हुनकला अवसर का सदुपयोग करती शिविर में उपस्थित होकन विशेषज्ञ चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श लिह आग्रह कैरखल। शिविर में हाथ जोड़नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डाक्टर राजकृष्ण श्रेष्ठ जनरल सर्जन डाक्टर नवीन श्रेष्ठ यूरो सर्जन डाक्टर सगुन थापा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर तृष्णा श्रेष्ठ तथा एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर विमेश साक्य सहभागी हुना अस्पताल जना राखल। अस्पताल से सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या हुईलक सबको बेरम्या हुन नक्ला समय में जो स्वास्थ्य परीक्षण कराकर निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा का लाभ लिह आग्रह कैरखल। ओरोल्पामा खल्लोसे पुहाइबेर एक वृद्धको मृत्यु हरहल। सुन सहारी गाउँपालिका एक फुली वन लघु रलक बाछे खल्लोसे एक वृद्ध हन खल्लोसे खोल्वा टर्ना क्रममा पुहिलक हो। सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता पुस्कन गाउँपालिकाको केन्द्र पोबाङसे घुम्ती करलक सुनसाहारी गाउँपालिका एक घुसपाङ 73 वर्षका मसान घरती मगरको मृत्यु हुलक प्रहरी जना राखल। उस्तका और जोखै घरती मगर घाइते हुलक घाइते घरती हन स्थानीय ओ प्रहरी से उद्धार कैकन उपचार कलाक सुलीचौर पठागिल्बा। होइठा त आज थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटी अखस्त खबरमा से समाचार कक्षको सक्कु संग्रहसँग म शालिक राम चौधरी विदाई टु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: ओखती आयुर्वेदिक टी मात्र रु 50 मा।
1: कुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-5161-210। थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि नीरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
2: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
3: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
4: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
3: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
5: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा।
6: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
7: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
5: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
7: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामी को चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
5: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा, साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
2: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 082-5361-218।